0: भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स।
1: रेनबो फंडेच्या उत्तरार्धात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। बारिश की
2: फेसबुक इन स्काय व्हाट्सअप इन लाइफ मान मोड काम इथे नो आराम सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फंडे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद

0: उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो ना तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम AIADMK से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: We have a deep and trusted relationship.
6: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
5: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
8: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz, and Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, and several

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएन पर भी सुन सकते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: जी आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। इस समय ठीक 8:42 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम मस्त मुंबई की शुरुआत करते हैं।

एक विशेष सूचना। भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.awards.gov.in यह वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी A25244670 और पासवर्ड A#175 इस प्रकार है। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं हूं आरजे किरण माला, इस समय आपके साथ। और हमारे साथ है एक नई आवाज, नई पहचान, वो अपना परिचय खुद देंगे।
1: क्या बात है किरण, आपने कितनी खूबसूरती से मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो नई आवाज और नई पहचान लेकर मैं हूं आरजे अनूप, और सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं मस्त मुंबई।
0: जी हाँ, इस समय हम सुनते हैं मस्त मुंबई। तो अनूप, अगर खेलों की बात की जाए तो क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है। क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे खेल भी मुंबई में लोग खेलते हैं। वैसे आज खेलों की बात करना बनता है, जानते हैं क्यों?
1: क्योंकि आज है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। यह हर साल 7 मई को मनाया जाता है। वैसे किरण, मुंबई में ऐसे कई मैदान हैं जहां पर संडे के दिन या छुट्टी के दिन लड़के लड़कियों को आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। खेल हमारे अंदर हेल्दी कंपटीशन की भावना पैदा करते हैं, और एक टीम के तौर पर कैसे साथ रहना चाहिए, आपस में कैसे तालमेल बनाना चाहिए, यह भी सीखते हैं, और साथ ही कैसे अनुशासन में रहना चाहिए,
0: ये सब हम खेल के जरिए सीख सकते हैं। अनूप जी, बहुत सही बात कही आपने कि लोग संडे के दिन क्रिकेट खेलते हैं या लड़के लड़कियां कोई भी खेल खेलते हुए दिखाई दे जाते हैं, और सभी खिलाड़ियों को आज खास बात, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज बहुत ही खास है सभी खिलाड़ियों के लिए। तो सभी खिलाड़ियों को इस दिन के ढेर सारी शुभकामनाएं, और व्हाट्सएप के जरिए बताएं कि आपका प्रिय खेल कौन सा है, यानी आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, या बचपन में आपको कौन सा खेल खेलना बहुत पसंद था। तो यहाँ पर मैं अनूप आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपने भी बचपन से या अभी तक आपको कौन सा खेल बहुत ज्यादा पसंद है, आप हमें बताएं तो हम हमारे लिसनर्स को बताएंगे। लेकिन तब तक हम एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: जी समय ठीक 9:13 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। मैं हूं आरजे किरण माला और मेरे साथ हैं आरजे अनूप जी। तो अनूप जी, आपको पता है साल 1965 में एक फिल्म आई थी शहीद। ये फिल्म अमर शहीद भगत सिंह की जिंदगी पर आधारित थी। भगत सिंह की भूमिका निभाई थी मनोज कुमार ने। इस फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन और आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।
1: वैसे किरण, प्रेम धवन जी एक कोरियोग्राफर भी थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में डांस डायरेक्शन का काम भी किया था। यह फिल्में हैं वक्त, धूल का फूल, नया दौर, दो बीघा जमीन, आरजू, गूंज उठी शहनाई और बहुत सारी फिल्में। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और 1971 में एक बेहतरीन गीतकार के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि नमन देते हैं और साथ ही उन्हीं के फिल्म का ये गाना सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये गाना अनूप जी, वक्त फिल्म का है ये गाना जो हम सुनेंगे।
1: क्या बात है।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी इस समय ठीक 9:35 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और मेरे साथ है अनूप यानी आरजे अनूप जी।
1: नमस्कार फिर से सभी को।
0: जी हाँ, तो अनूप जी अब मैं कुछ बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिए। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस राष्ट्रगान के रचयिता की बर्थ एनिवर्सरी है, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे इन्हें पूरी दुनिया में गुरुदेव के नाम से भी जाना गया है। ये एक लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी। गुरुदेव एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आज हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।
1: और किरण, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अब मैं एक बहुत दिलचस्प बात आप सभी को बताना चाह रहा हूँ।
0: अच्छा?
1: ये कि गुरुदेव जी ने ना केवल भारत का नेशनल एंथम लिखा, पर वे दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम लिखा है, एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। वाकई काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे हमारे गुरुदेव।
0: कमाल की बात है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।
1: बिल्कुल।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 एफएम। आज हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं। 7 मई 1861 को बंगाल में उनका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी बैरिस्टर बनना चाहते थे, इसीलिए 1878 में कानून की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए ही वे वापस हिंदुस्तान भी आ गए। उन्हें तो बचपन से ही कविताएं कहानियां लिखने का शौक था। 1901 में गुरुदेव ने एक खास तरह के विद्यालय की स्थापना की। बाद में 1921 में ये विद्यालय विश्व भारती के नाम से जाना गया।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, समय ठीक 9:54 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर, और हमारे साथ है हमारे आरजे अनूप जी। तो अनूप जी, आपने 1991 में एक फिल्म आई थी हिना, ये जरूर देखी होगी।
1: बिल्कुल देखी है किरण, और मुझे बहुत पसंद आई थी और इसके गाने भी काफी सुरीले थे।
0: आपको पता है अनूप, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राज कपूर साहब, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया था। ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी, जैसा कि आपने कहा कि गाने सच में बहुत हिट हुए थे। तो आपको पता है ये मैं क्यों कह रही हूँ आज?
1: बताइए।
0: नहीं नहीं, आप बताइए।
1: कुछ तो खास होगा, अगर आप हिना के बारे में आज बात कर रही हैं तो डेफिनेटली कुछ खास बात है।
0: सही कहा। जी हाँ, आज अश्विनी भावे जी का बर्थडे है, तो हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन की।
1: हैप्पी बर्थडे अश्विनी भावे जी, हैप्पी बर्थडे।
0: तो अनूप जी, एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो मैं अब पूछ लेती हूँ कि वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिख कर दिया है व्हाट्सएप पे कि उन्हें क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है और उनके पसंदीदा खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर जी। तो अब आपकी बारी आती है, आप बताइए कि आपको कौन सा खेल बहुत पसंद है।
1: किरण, वैसे तो मैं काफ़ी खेल खेलता हूँ, पर मेरी पसंद का खेल जो है वो भी क्रिकेट ही है। और एक दिलचस्प बात यह है कि लोग संडे का इंतज़ार करते हैं कि आराम करेंगे और पूरे हफ्ते की थकान मिटाएंगे, पर मैं संडे का इंतज़ार इसलिए करता हूँ ताकि सुबह सुबह 4 घंटे अपने क्रिकेट को दे सकूँ, क्योंकि मुझे ये खेल बहुत पसंद है।
0: क्या बात है।
1: और अब किरण, वक्त हो चला है मस्त मुंबई के सफर को यही अंजाम देने का। सारे श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि आप और मैं यहीं बने रहेंगे, ठीक 10 बजे सुनेंगे वो लोग हिंदी में समाचार, और 10:02 पर हम फिर जुड़ेंगे उनसे हमारे शो नमस्ते भारत में।
0: तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। यह कार्यवाही पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। कल उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक में दोनों देशों के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। आज वह मुंबई में हैं और उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ कि कल रात उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अंत में खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसी के साथ समाचार समाप्त।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के बज चुके हैं 10:02 और अब आप सुनेंगे नमस्ते भारत। मैं हूं आरजे अनूप और मेरे सामने है आरजे किरण। किरण, श्याम बेनेगल जी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। श्याम बेनेगल जैसे बेहतरीन डायरेक्टर की एक फिल्म आई थी, मंथन। ये फिल्म 1976 में आई थी और अपने विषय की वजह से इसे बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म में न केवल कहानी बहुत अच्छी थी, पर एक खासियत यह थी कि इस फिल्म में न गाने थे और न ही कोई एक्शन था। तो हम यह कह सकते हैं कि बॉलीवुड स्टाइल की यह कोई मसाला फिल्म नहीं थी। और इस फिल्म में स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह जैसे जाने माने कलाकारों ने काम किया था।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने। जब 2024 में फ्रांस में कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया गया तो उसमें मंथन फिल्म दिखाई गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद इसे 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया था। ये भारत के लिए और सभी भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए गर्व की बात है।
1: क्या बात है, सुनकर ही और इसे सिर्फ विजुलाइज करने से ही एक गर्व महसूस हो रहा है।
2: जी हाँ, इसी पर हम एक दो और थोड़ी सी और बातें करेंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं अनूप यहाँ पर ये गाना, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात आपने कही है फिल्म मंथन के बारे में। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को। किशोर कुमार की आवाज में है अनूप जी ये गाना।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत कीजिए।

0: यह समय ठीक 10:09 हुए हैं और कार्यक्रम नमस्ते भारत की शुरुआत हो गई है और हमारा शीर्षक है कहानियां सुनाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आरजे अनूप जी ने बताया कि मंथन फिल्म आई थी 1976 में और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही, तो हम आपको बताते हैं कि ये फिल्म अपने आप में एक अनोखी फिल्म थी। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे क्राउड फंडिंग से बनाया गया था, है ना कमाल की बात अनूप जी?
1: बिल्कुल, और सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रही है ये पूरी बात।
0: और आपको पता है 5,00,000 किसानों ने लगभग 2-2 रुपए इकट्ठा करके ये फिल्म बनाई थी।
1: क्या बात है। और किरण सोचिए, 2-2 रुपए जमा करके टोटल करीब 10,00,000 रुपए जमा हुए और तब ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे, पहला 1977 की बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का और दूसरा बेस्ट स्क्रीनप्ले के लिए मशहूर लेखक विजय तेंदुलकर जी को मिला था।
0: जी बहुत ही कमाल की बात है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस समय कोई ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जो कि 10,00,000 में कोई फिल्म बना सकता है?
1: मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
0: जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: चांगला विकास।
1: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल। तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया। प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे। जनगणना 2027 आपली आहे। जनगणना आपली आहे।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: जी समय ठीक 10:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। तो अनूप जी, हमें बताइए कि आप चाय पीते हो?
1: किरण, चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ मैं।
0: अरे बाप रे, तो ऐसा यानी आप पर ये मुहावरा लागू होता है, चाय तो जिंदगी है भाई।
1: बिल्कुल, और सही बताऊँ तो बहुत डांट भी खाता हूँ अपनी माँ से क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चाय पीता हूँ।
0: चाय पीना तो ठीक है, लेकिन अगर चाय को अगर एक बार बनाने के बाद उसे यानी कि 15-20 मिनट बाद फिर गर्म करके पीते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है अनूप।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो और ये बात मैं जानता हूँ, पर सही कहूँ तो इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है कि ये पाप रोज ना चाहते हुए हो ही जाता है मुझसे।
0: तो भैया सोच लीजिए अभी से कि चाय पिए लेकिन तुरंत बनाए, तुरंत पी लीजिए, उसे रख कर 1-2 घंटे बाद या फिर से गर्म करके बार बार ना पिए।
1: चलिए, आज इस शो में अगर हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं तो आज मैं प्रण लेता हूँ कि आज से ऐसा ही करूँगा। थैंक यू किरण, आपने बहुत प्यारी बात मुझे बताई है और शायद आज इस शो के कारण ही मैं ये प्रण ले पा रहा हूँ।
0: ओहो, क्या बात है। तो सुबह उठकर जैसा कि अक्सर बहुत सारे लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं और

0: है, कॉफ़ी के लिए दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी दूध हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और 1970 में हमारे देश में एक ख़ास तरह की क्रांति हुई थी, तो अनुप जी आप हमें बताइए वो कौन सी क्रांति हुई थी।
1: बिल्कुल किरण, ये एक बेहद ख़ास किस्म की बहुत बड़ी क्रांति थी जिसका नाम था वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति। इसे मिल्क रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति का तल्लुक दूध से था और यह क्रांति गुजरात में की गई थी। गुजरात के गांव में किसानों से उचित दाम पर दूध खरीदने की योजना बनाई गई और इस दूध को गुजरात के शहरों तक पहुंचाया गया। यह सारा काम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब किसानों को मिला और इस तरह दूध की दुनिया में क्रांति हो गई। चलिए,
0: हाँ गाना तो सुनेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले आपने मंथन फिल्म के बारे में बताया था कि भाई ये देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ाव हो गया, मंथन दूध वगैरह वगैरह।
1: काफी खूबसूरती से जुड़ गई बातें।
0: तो चलिए सुनते हैं यहाँ पर गाना और उसके बाद हमारी बातचीत तो यूं ही चलते रहेगी क्योंकि हम और आप यहाँ पर श्रोताओं के साथ है 11 बजे तक।

0: Cosmos डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी माए।

जी हाँ, सुबह बज चुके हैं 10:37 और मैं हूँ आरजे अनूप। मेरे साथ हैं आरजे किरण। हम बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की और वाइट रिवॉल्यूशन की। इस वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति को करने वाले थे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह एक डेयरी इंजीनियर थे। 1949 में भारत सरकार ने डॉक्टर कुरियन को गुजरात के आनंद शहर में भेजा और मकसद था दूध के काम को संगठित करने के लिए नए प्रयोग करना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली। उनके इस प्रयोग ने दूध के इस धंधे को न केवल एक संगठित व्यापार बना दिया, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बना दिया। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया का नाम भी मिला। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। आगे और

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत कहानी सुनाती है। एक विशेष सूचना, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.awards.govin.in यह वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी A25244670 और पासवर्ड #1577 इस प्रकार है। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: इस समय ठीक 10:55 हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम यानी नमस्ते भारत का हम यहीं पे समापन करते हैं। और गाना होगा आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है सोहनी महिवाल, और हमारे स्टूडियो में आरजे सोनाली भी आ गई है। तो चलिए एंजॉय करिए इस गाने को और ढेर सारे गाने के साथ मिलेंगी सोनाली जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो।
1: और मेरे यानी आरजे अनूप की ओर से भी आप सभी को नमस्कार, और फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 11 बज रहे हैं, समय जानने के इस घंटे के समाचार। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष तो लाम थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे की शुरुआत वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिंग द बेल समारोह से करेंगे। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और भारत वियतनाम व्यापार मंच में शामिल होंगे, जहां वे मुख्य भाषण देंगे। दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रपति तो लाम लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ समारोह में शामिल होंगे। आगे है, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमरीका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोकने और निष्क्रिय करने का दावा किया है। अमरीकी सेना के अनुसार एटी हसना नाम का यह टैंकर अमरीकी समुद्री नाकेबंदी तोड़कर ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और अंत में, दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 एफएम रेनबो।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
1: हाँ जी, बिल्कुल, म्यूजिकली योर्स। 11:01:45 और गुड मॉर्निंग कहती हुई मैं हाजिर हो गई हूँ सोनाली आपके साथ में। ब्रेक फ्री प्रोग्राम है तो बिल्कुल भी म्यूजिक को ब्रेक नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे इस गाने के साथ, है ना। तो कुछ रोमांटिक गाने, कुछ फास्ट गाने और कुछ, कहते हैं ना कि मेलोडी बरकरार रहनी चाहिए, तो इस मेलोडियस आर को आगे बढ़ाते हैं इन कुछ गानों के साथ में। सुनते रहिएगा 107.1 एफएम रेनबो। साथ ही साथ अगर आपने ट्यून इन किया हुआ है 107.1 एफएम रेनबो डीटीएच पे सुन रहे हैं, ऐप पे सुन रहे हैं, रेडियो स्टेशन मतलब रेडियो से सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं ये ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। सुनते रहिएगा

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: हाँ जी बिल्कुल Musically Yours 11:12 हो रहे हैं और आज मेरे साथ है ना बहुत ही स्पेशल एक मेरी को आरजे हैं और नई आई हैं. आई एम श्योर आप लोग तो उन्हें जानते हैं लेकिन मैं आज पहली बार मिल रही हूँ. वेलकम आरजे रिद्धि.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो भाई रिद्धि आज इस तपती धूप में दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँची है. क्या हो गया था रिद्धि?
2: बस वही हम कहते हैं ना कि घिसी पिटी जो कहानियां होती है मुंबई की लोकल ट्रेन में जब आप सफ़र करके आते हो और जब आपको पता है कि बस आपको 10 मिनट की देरी होगी लेकिन इस 10 मिनट का एहसास ये ट्रेन हमें करवा देती है.
1: पल पल जब कहते हैं ना कि वो सेकंड का काटा आगे चलता रहता है तो एक्चुअली ये सफ़र कभी कभी सफरिंग बन जाता है लेकिन कभी कभी ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है.
2: जी
1: तो आज है ना टूरिज्म डे भी है. सो टूरिज्म डे के चलते हमारा जो ये प्रोग्राम है ब्रेक फ्री में इसमें है ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे हम कुछ छोटी मोटी जर्नी की बात करेंगे और उस जर्नी के अनुभवों की तो नहीं लेकिन हाँ जो बदलते हुए रास्ते होते हैं उनके बारे में बात करेंगे.
2: क्या बात है, मतलब अब तो मज़ेदार होने वाला है कि हम कैसे सफ़र में सफ़र कर रहे हैं या फिर सफ़र का मज़ा उठा रहे हैं.
1: करेक्ट. तो चलिए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले ले लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के साथ में. सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो. गुड मॉर्निंग.
0: आकाशवाणी @90 निमित्तानं आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या.
3: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल. तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव. व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा.
0: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता.
3: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह दादर पश्चिम. प्रवेश विनामूल्य.
0: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण. सूर गौरव संध्या.
4: नमस्कार, मी नितीन साळुंखे. अज्ञात मुंबई आणि अज्ञात मुंबई 2 या मुंबईच्या इतिहासावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा मी लेखक. आपली मुंबई आणि मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेला पायाने सहज उडवलेला दगड ही इतिहासाचं भांडार आहे. या दोन्ही पुस्तकातून आपल्याला मुंबईचा इतिहास उलगडतो त्याचंच क्रमशः वाचन येत्या 10 मेपासून आकाशवाणी मुंबईच्या FM रेनबोवर सकाळी 7:45 आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आपल्याला ऐकता येईल. आपण अवश्य ऐकावं आणि मुंबईच्या इतिहासाचा आनंद घ्या.
5: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
6: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने. शर्तें लागू.
5: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ.

0: नया जोश है वन लव। ब्लू और शान की आवाज में रक्त फिल्म का गाना भी आपके लिए प्ले किया और प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री, मैं और आरजे
1: रिद्धि के साथ।
0: हाँ जी, सो 11:24 और रिद्धि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वन लव क्या है?
1: सच कहूँ तो सोनाली, वन लव का जब मैं सोचती हूँ तो मेरे ख्यालों में ट्रैवलिंग आता है।
0: क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया वाला वन लव है आपका। तो ये इसके पीछे मतलब आप थोड़ी सी बात बताओ ना, लाइक लिटिल इलैबोरेट, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना बहुत सारी बातें आती है, तो किस तरह का ट्रैवलिंग आपको पसंद है?
1: तो मुझे ट्रैवलिंग ऐसी पसंद है कि डेस्टिनेशन पर तो ठीक है, हम रोज किसी ना किसी काम से निकलते हैं और पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी ट्रैवलिंग हो जिसको करते वक्त वो रूट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि ट्रैकिंग।
0: ओह वाओ, यस यस यस,
1: आई लव ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग का ऑफकोर्स आप बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हो, छोटे छोटे रास्तों को चलते हो, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो और साथ में वो जब कहते हैं कि भाई तुम चढ़ाई चढ़ने वाली हो तो तुम्हें एक डंडी साथ में रखनी होगी या एक लाठी का सहारा लेकर चलना होगा, तब तो फिर समझ आ जाता है कि भाई हम अकेले नहीं है इस सफर में, कोई है हमारे साथ जो हमें दिख नहीं रहा है।
0: सच में, और मुझे लगता है कि जब हम उन पगडंडियों पर चलते हैं ना रिद्धि, तब कहीं ना कहीं हम आसपास की चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। मुझे याद है मैं भी इस तरह के एक बार जब ट्रैक पे गई थी, तो वो जो रास्ते में कई बार नहीं मिलते छोटे बेर, काकड़ी और कैरी, ओ माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ गया। और सच कहूँ तो जब हम ट्रैवल की बात करते हैं तो हम अभी भी ट्रैवल करके ही आए हैं, सो पगडंडी वाला जो एक रास्ता होता है उसमें हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना जरूर होता है, लेकिन नज़ारे भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हालांकि हम जो ट्रैवल करके आते हैं, हमें लगता है कब ये ख़त्म होगा और कब हम जगह पे पहुंचेंगे। सो देखिए, हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग अंदाज होता है, मज़ा होता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर, क्योंकि अगला जो गाना आ रहा है, यस, ये मौसम को महका भी देता है, सुनिए।

0: आपको आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: 11:37 और मुँह मुँह के धागे पर पवन की आवाज़ में, व्हाट अ सूदिंग सॉन्ग। और इस गर्मी में इतना प्यार भरा कोई गाना सुना दे, ऐसा लगता है कोई सहला गया, ठंडा पानी पिला गया। तो हम पगडंडी और कुछ रास्तों की बात कर रहे थे रिद्धि। हम लोगों ने पूछा भी है हमारे लिसनर से कि वो कहाँ से सुन रहे हैं। सो आई एम श्योर कुछ लोगों ने हम तक रिप्लाई पहुँचाए होंगे, हम कुछ ही देर में उनके बारे में भी बात करेंगे ही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जब हम पगडंडियों की बात की, अपने शहर के रास्तों की बात की, कभी हाईवेज पे गए हैं?
1: नहीं, पर जब भी गई हूँ, मतलब आम तौर पर हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब भी हाईवे से गई हूँ वहाँ का पूरा माहौल अलग है। ऐसा लगता है जैसे कब ये हाईवे ख़त्म हो और मैं अपने गंतव्य पर पहुँच जाऊँ। पर हाँ, कभी कभी कुछ जगहों के हाईवेज़ कहते हैं ना, वो भी बहुत सुहावने लगते हैं, जिसके इर्द गिर्द आपको लेफ्ट एंड राइट देखने की इच्छा होती है।
0: करेक्ट। और जब इन हाईवेज़ पे अगर आपके दोस्तों का साथ हो और ब्यूटीफुल म्यूजिक साथ हो,
1: बात है,
0: तो फिर है ना बिल्कुल ऐसा कुछ माहौल सा बन जाता है। अगला गाना आ रहा है आपकी तरफ लकी अली की आवाज़ में, और आई एम श्योर जब ये गाना आप सुनेंगे और ऐसा लगेगा कि चलो हम भी कहीं निकल पड़ते हैं। सुनिए, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्युझिकली योर्स.
2: अब सुनते हैं एक जरूरी सूचना. भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं. प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए awards.gov.in ये वेबसाइट देखें. प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है 8252446702. पासवर्ड है कैपिटल ए स्मॉल यू 779#157 इस प्रकार है. अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है. सुनते रहिए प्रोग्राम ब्रेक फ्री.

0: आकाशवाणी @90 निमित्तानं आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या।
1: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल, तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव, व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा।
0: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता।
1: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर पश्चिम, प्रवेश विनामूल्य।
0: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण, सूर गौरव संध्या।
2: ग्यारह बजकर 50 मिनट हो चुके हैं, मैं सोनाली और मेरे साथ है आरजे रिद्धि, और हम दोनों अगर का पहला वर्ड निकाले ना तो फिर सॉरी हो जाता है, लेकिन हम तो बिल्कुल सॉरी नहीं, क्योंकि हम तो बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक बजा रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि आप कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर हो जाता है सॉरी, लेकिन हम तो साथ साथ है।
3: हाँ
2: तो चलिए रिद्धि, हमें जिन लिसनर्स के मैसेजेस आए हैं वो उनके थोड़े नाम बता देते हैं। शुरुआत करते हैं रामगंज खंडवा से महोबिया परिवार, देन अदनान अंसारी का मैसेज आया है, दीपा पालकर जी का मैसेज आया है, फिरोज सिगनपुरिया, नितिन ढोकणे, पूनम ढोकणे का बुलढाणा महाराष्ट्र से मैसेज आया है, साथ साथ गणेश पाटिल वधावन से, पंकज मोहोड़ शुभदा जी का मैसेज आया है, विजेंद्र घटोल अकोला से, शुभलक्ष्मी मस्तकार अजय साकरे इंदौर से, प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया है, राकेश माथुर जी का मैसेज आया है, अविना सुरेश काशीनाथ पाटिल का मैसेज आया है, और हाँ जी बस इतने मैसेज हम तक पहुँचे हैं। काफ़ी सारी बातें हो रही है जिसको कि अब हम कुछ ही देर में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम जर्नी की बात कर रहे थे, सफ़र की बात कर रहे थे, सो आई एम श्योर आपकी भी जो जर्नी होती होगी घर से डेस्टिनेशन तक काफ़ी इंटरेस्टिंग होती होगी।
3: हाँ, और कई बार हमें ना ये जर्नी, ये जो सफ़र है, सच में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जब हम लौटते हैं तो उस प्रोसेस और उस सीख को साथ में लेकर एज अ सुवीनियर लौटते हैं।
2: सच, बिल्कुल सच बोल रही हो।
3: ठीक है, तो अब जब वस्तुओं की, सुवीनियर की बात आती है, तब हम शायद कभी कभी उन यादों को, उन जगहों को भूल जाते हैं कि वहाँ जाकर असली आनंद जो हमें आया है। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं मेरे राइट देखूँ या मैं मेरे लेफ्ट, मुझे हर बार कुछ नया देखने मिलता है, सीखने मिलता है, और शायद यही ट्रैवलिंग का असली मज़ा है।
2: एब्सोल्युटली। तो 11:53 हो रहे हैं, हमारा जो इस प्रोग्राम है ब्रेक फ्री को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। 12 बजे समाचार, और समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम म्यूजिक कैफे, जिसमें कैफे में आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रिद्धि भी है, और हम मिलकर काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। तो इस आर का ये आखिरी गाना आप सबके लिए, सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 पर। तो आइए सुनते हैं इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। आगे सुनते हैं। नासिक में भव्य संयंत्र कुंभ मेला आयोजित किए जाने के मद्देनजर 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सिंहस्थ कुंभ मेले के अनुरूप धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व वाला नासिक जिला आने वाले समय में विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां औद्योगिक विकास को क्षमता और सुविधाओं के माध्यम से वास्तविक मजबूती मिलेगी तथा निवेश के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बुधवार को आयोजित कुंभ उद्योग संगम और नासिक निवेश शिखर सम्मेलन 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते समय ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बृहस्पतिवार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव BL संतोष बुधवार रात से ही पटना में मौजूद है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार में शामिल होने पर सहमति दे दी है। यहीं पर समाचार समाप्त।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણા ગુજરાતમાં હાલોલ અને એની આગળ બહુ નામનું ગામ છે, ત્યાં મજૂર વર્ગ બહુ છે, તો મને એક ગીતની ફરમાઈશ કરી હતી અને ત્યાં કઈ થાકીને લોકો સાંજે મોજું કરતા હોય ત્યારે

0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को। अब शो चल रहा है म्यूजिक कैफे। जब हम बात करते हैं जगहों के बारे में, जब हम बात करते हैं अपने अनुभव के बारे में, तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने आने वाली हूँ कि आपको लगेगा कि अरे ये टॉपिक हमारे इतना पास था, इतने इर्द गिर्द था, पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये ऐसी चीज़ है जो आपके पास है।
1: ऐसी कौन सी चीज है रिद्धि जो हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं है?
0: आपके पास है, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वो आप पर हुकूमत चला रहा है तो?
1: अब ये बात तो वाकई सोचने वाली है, लेकिन उसके पहले हम शो को आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम बता देते हैं कि अब चूंकि हम अपने प्रोग्राम के अगले आर में आ चुके हैं जिसका नाम है म्यूजिक कैफे, सो म्यूजिक कैफे में मैं सोनाली और रिद्धि आपको वेलकम करते हैं और रामलीला का तड़कता भड़कता गाना सुन लिया है। जब भी हम कैफे में जाते हैं ना, तो उसकी जो एक वाइब होती है, जो आज की जनरेशन में कहते हैं कि भाई वाइब मैच नहीं हो रही या वाइब ऐसा नहीं हो रहा, तो कैफे की वाइब हमेशा ही बहुत यू नो फ्रेंडली सी वाइब होती है। और फ्रेंडली सी वाइब में आमतौर पर बहुत ही अच्छी वाली शेयरिंग होती है ना रिद्धि
0: जी?
1: तो वो शेयरिंग और केयरिंग, अब कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें आसपास ही हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो क्या ये शेयर करने से आसपास की चीज़ों के बारे में पता चल सकता है?
0: हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। शेयरिंग मतलब भले सुनने में छोटा लगता हो,

0: लेकिन कई बार सही जगह पर सही लोगों के साथ अगर हम शेयर करें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
1: बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले है ना, हम एक बात शेयर कर देते हैं कि अपनी जो म्यूजिकल मेलोडीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो अगला गाना पहले सुन लेते हैं और इस कैफे में बैठे बैठे फिर दोस्तों के साथ बातें तो होंगी ही। सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: प्रोसेस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए. इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू. शर्तें लागू. आज ही संपर्क करें.
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. एनरिचिंग लाइफ.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम म्यूजिक कैफे, जिसमें मैं आपकी सखी रिद्धि बात कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज जो आपके बहुत पास है सोनाली, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर रही है।
1: जैसे
0: जैसे फोमो
1: फोमो
0: फियर ऑफ मिसिंग आउट।
1: हाँ भाई, ये तो आजकल बहुत हो गया है रिद्धि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक तो हमें सब कुछ जानना होता है, क्योंकि आजकल मतलब कहते हैं कि दिस इज़ इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, हर तरफ इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है, चारों तरफ से

0: आप सोशल मीडिया पे देखो, जहां भी देखो इन्फॉर्मेशन की बरसात हो रही है। ऐसे टाइम पे हाल ही में कुछ समय पहले मैं अपने एक नेफ्यू से मिली और उनसे बात करते समय से, अरे आपको नहीं पता? मैंने कहा क्या? तो बस फिर तो इन्फॉर्मेशन उसने निकाल दी और मैंने कहा अइला ये तो सब मुझे पता ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब हम इंसान सारी चीज़ों को तो नहीं पता कर सकते, तो ये आई थिंक तुम जो कह रही हो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वही है राइट?
1: जी एकदम सही कहा आपने कि अब क्या हो गया है, एक समय था जब हमारे पास अधिक जानकारी नहीं थी, या यूं कहो कि जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी भी नहीं थी। और अब समय ऐसा हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि हमें जितनी जानकारी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जानकारी हमारे ऊपर नीचे आसपास हर जगह है। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से अभी के समय में हम सबके मन में एक चीज आती है, यार मेरा क्यों ऐसा नहीं है। हम लगातार लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, चाहे वो सैलरी की बात हो या फिर किसी महंगे फोन की बात हो, कि यार मैं तो देख रही हूं मेरे आसपास सभी लोग, मेरे कजिन सबके पास महंगा फोन है, लेकिन मेरे पास कब आएगा? यार मेरी सैलरी से उसकी सैलरी ज्यादा कैसे? या मेरे शादी का लहंगा सबसे अलग होना चाहिए। अब इन सारी बातों में हमारा ये फियर उभर कर आता है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो भाई है। अभी तो ट्रेन में आते समय मुझे फोर्थ सीट ही क्यों मिली है
1: इसका भी फियर होता है।
0: correct, correct.
1: कि उसको विंडो सीट मिली है, मुझे क्यों फोर्थ मिलती है हमेशा। सही कहा। तो ऐसे ही फोमो के बारे में हम और भी बातें जारी रखेंगे, और उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: तो हम बात कर रहे थे सोनाली फोमो की।
1: हाँ, और फोमो है ना, एक्चुअली देखा जाए तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब बात निकलती है कि हम आमतौर पे क्या क्या मिस करते हैं।
0: जी,
1: एक तो तुमने बताया कि हम इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ में हमें वो सब चाहिए जो हमारे पास
0: नहीं है। ये तो सबसे बड़ी, कहते हैं ना कि हमारे प्रॉब्लम का जो सलूशन है, ये यही सलूशन है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है बस हम उसका डर बनाए रखते हैं और उस चक्कर में इस फियर को पनपने देते हैं और मिसिंग आउट क्या करते हैं पता है, उन चीज़ों को जो हमारे पास है।
1: मतलब सच कहूँ ना तो मेरे प्लेट में पानी पूरी है लेकिन सामने कोई पापड़ी चाट खा रहा है तो मुझे वो भी खानी है।
0: बस बस बस, वो तो कहते हैं ना कि हर इंसान को दूसरे के थाली का लड्डू थोड़ा बड़ा ही दिखता है।
1: सही।
0: तो प्रॉब्लम लड्डू में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों में है कि भाई थोड़े अपने तरफ ध्यान दो, अपने पास जो है उस पर ध्यान दीजिए।
1: और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो इंसान हमारे साथ है हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और किसी और की झलक देखने के लिए बड़े बेताब से हुए जाते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो इसी बात पे कोई झलक ले ले अगले से गाने की।
0: देखते हैं अब ये गाना क्या कह रहा है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी @90 निमित्तान आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या।
2: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल, तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव, व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा।
1: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता।
2: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर पश्चिम, प्रवेश विनामूल्य।
1: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण। सूर

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। एक जरूरी सूचना आपके लिए, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://award.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव के लिए लॉग इन आईडी है 8252446702। पासवर्ड है AU779/157। इस प्रकार है, अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। ये जानकारी आपको दी जा रही है आकाशवाणी मुंबई की तरफ से। और अभी जो आप सुन रहे हैं वो प्रोग्राम है म्यूजिक कैफे। आ रहा है अगला गाना आपकी तरफ।

0: तो भाई बहुत सोचने के बाद पता चला कि हम एक्चुअल में क्या मिसिंग आउट कर रहे हैं,
1: करेक्ट।
0: और मुझे इस बात का फियर था सोनाली कि कहीं मैं अच्छे गाने मिस आउट ना कर दूं।
1: नहीं, वो तो तुमने आई एम श्योर नहीं ही किया है, क्योंकि जो जो मैसेजेस हम तक आ रहे हैं वहां से तो पता चल रहा है कि कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है।
0: हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यार हमने फोमो की तो बात कर ली, मुझे ये बताओ कि अगर आपको किसी चीज का डर हो तो
1: करेक्ट।
0: आप उस डर को कैसे हटाती है, और उस डर की जगह हिम्मत और सकारात्मकता कैसे लाती है?
1: अब ये है ना, सच कहूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटर्स तो होते होंगे ना।
0: हाँ, जैसे कि मैं क्या करती हूँ ना सोनाली, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी सुनी है कि यार जो भी दिमाग में आए ना बस उसे लिख दो, जो भी दिमाग में आए बस उसे लिख दो, क्या पता लिखते लिखते पता चल जाए कि हम जिन चीजों से डर रहे हैं वो असल में डरने की नहीं, हंसकर भूल जाने के लायक है।
1: करेक्ट। और अभी है ना, हाल ही में मुझे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि अपने लिए दिन में कुछ समय निकालना बहुत ज्यादा
0: क्या
1: जरूरी
0: बात
1: होता
0: है,
1: है। और अपने लिए कुछ समय तो निकालो ही, लेकिन कुछ उस समय में यूं ही मत बैठे रहो, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे कि है ना अपना कहते हैं ना सेल्फ वर्थ, वो थोड़ा बेटर हो जाता है। और फिर जब आप खुद ही खुद को अच्छा समझने लगते हो तो अपने आसपास की चीजें अपने आप अच्छी लगती
0: फिर
1: है।
0: तो कोई फोमो नहीं अपने आसपास भटक सकता है।
1: हाँ
0: और मैं तो कहूंगी कि हमें, सही कहा आपने कि हमें ना कभी कभी कुछ समय के लिए ही सही रील से बाहर आकर रियल वर्ल्ड को देखना चाहिए। लॉन्ग
1: सच
0: ड्राइव पर चले जाओ, अपने आसपास के कहते हैं ना हम पेट्स, कुत्ते बिल्ली को देख लो, जिससे हमें पता चले कि रियल वर्ल्ड कितना जरूरी है और कितना अच्छा है।
1: सच बोल रही हो। और ये जो रियल वर्ल्ड का म्यूजिक है ना रिद्धि, इसको अगर हम एक्सपीरियंस कर लेते ना, तो मुझे लगता है फोमो थोड़ा दूर रह
0: दूर
1: सकता
0: रह
1: है।
0: जा सकता है। करेक्ट है, करेक्ट है।
1: तो चलिए, अब म्यूजिक कैफे को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। दोस्तों यारों की बातें तो होती ही रहती है, क्योंकि कैफे होता ही इस तरह के कॉन्वर्सेशन के लिए है। तो आज मैंने और रिद्धि ने म्यूजिक कैफे में बैठकर आपके साथ

जो बातें शेयर की, आई एम श्योर वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि 1 बजे होंगे समाचार, और समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम हिट एंड हॉट, जिसमें आप आपकी पसंद के गाने सुनेंगे। तो आपकी पसंद की जो म्यूजिक लिस्ट के साथ रेडी रहिएगा और मैसेज करते रहिएगा। तब तक सुनिए ये गाने जो आपके लिए है खास।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: हाँ जी बिल्कुल, म्यूजिकली योर्स। 1:05 हो चुके हैं। अब हिट एंड हॉट ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जब हम कहते हैं हिट एंड हॉट तो गाने कैसे हो, कैसा लगता है रिद्धि, कैसे गाने हो?
2: हिट एंड हॉट में तो गाने बिल्कुल इसके नाम की तरह होने चाहिए, है ना? एकदम तड़फतेदार, बोलते हैं ना कि जिनको सुनकर मजा आ जाए कि यार हम कुछ कर कर दिखाए बस।
1: तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो इसी तरह के गानों के रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो नंबर आपको हम दोहरा देते हैं,
2: तो आप अपनी रिक्वेस्ट या मैसेज इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 8657661071।
1: हाँ जी, मतलब 8657661071, ये हमारे स्टेशन की आइडेंटिटी है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला गाना आपके लिए प्ले करते हैं। ये गाना सच कहूँ तो मेरी और रिद्धि की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपके लिए। सुनिए और तब तक आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाइए।

तो कैसा लग रहा है हिट एंड हॉट शो में हमारे प्यारे गाने सुनकर? उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। अब आपकी फरमाइश के भी गाने आप सुनेंगे बहुत ही जल्द,

0: जहां हिट एंड हॉट में हम वो गाने चलाते हैं जो आपके मन में और आपके दिमाग में होते हैं।
1: और सच कहूँ ना तो ये है ना, मुझे लगता है रिद्धि हमारे जो लिसनर्स हैं इनकी चॉइस इतनी खास होती है कि ऐसा लगता है कि म्यूज़िक का एक बुफे बना दिया है और हर एक इंसान अपनी अपनी पसंद के अपनी अपनी चॉइस के गाने सिलेक्ट करके हम जब वो पूरा एक म्यूज़िकल जर्नी पे जाते हैं ना तो हर स्टॉप पे कुछ ना कुछ खूबसूरत सा गाना होता है। जैसे हमारे लिसनर, अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सबके नाम तो हम एंड में बता देंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो विद्या बालन का गाना सुनना चाहते हैं तो चलिए उनके लिए गाना प्ले कर देते हैं। कौन सा सुनिए तो, बन जा मेरी रानी तुम्हारी सुलू, आरजे ही थी उसमें विद्या जी भी, सुनिए।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किल दिल फिल्म का गाना अभी आपके लिए प्ले किया आप ही के रिक्वेस्ट पे। कैसा लगता है ना कि जब आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट के गाने जब ऑन एयर बजते हैं, तो मुझे याद है कि जब हम रिक्वेस्ट भेजा करते थे रेडियो पे और जब गाना बजता था तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरा गाना प्ले हो रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस लगता है।
1: हाँ, जब कोई कहता है ना मेरा वाला गाना बजाओ या अरे मेरे वाले गाने में जो मजा है ना, मतलब हम कैसे ना आसानी से उस गाने को हम खुद से जोड़ देते हैं। शायद उस गाने के लिरिक्स ऐसे होंगे या उसकी कोई धुन ऐसी होगी जिससे हम बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं और फिर कहते हैं भाई मेरा वाला गाना बजाओ ना।
0: हाँ, मेरा वाला गाना बजाओ। और सच कहूँ तो कई सारे गाने होते हैं जो इंसान खुद के साथ भी रिलेट कर लेता है। जैसे जो गाना हम तक अभी पहुंचा है, ये गाना आई एम श्योर जो भेजा गया है वो इस वजह से ही भेजा है कि सुनने वाला भी अपने आप को बहुत प्रिटी समझते हैं।
1: हाँ,
0: सो इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रिटी वुमन। सुनिए, आप भी सुनिए इस गाने को, एंजॉय करिए, बने रहेगा 107.1 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्झ म्युझिकली योर्स.
2: जरूरी सूचना: भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं. प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए awards.gov.in ये वेबसाइट देखें. प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है 8252446702. पासवर्ड है कैपिटल ए स्मॉल यू 779#157. इस प्रकार है. अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है.
3: ये तो थी जानकारी जो हमको आप तक थी पहुंचानी. 1:51 हो चुके हैं. प्रोग्राम हिट एंड हॉट को अब यहीं पे वाइंड अप करने का टाइम आ गया है. जाने से पहले मैं उन सभी लोगों के नाम बताना चाहती हूँ जिन्होंने हम तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई. सुशील यादव, रेनू यादव, इनका मैसेज आया था जो कि उदयपुर से मैसेज करते हैं. मीना जी का मैसेज आया था. अच्छा लगता है जब हमेशा सुनने वाले लोग मैसेज करते हैं. साथ ही दीपा पालकर जी का, विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रणव शिंदे जी और अभिजीत गभानकर का दिग्दर्शन और कविता, वैदेही जी का मैसेज आया था, फिरोज सिगनपुरिया, रघुनाथ खन्नुकर कोल्हापुर से, मुकेश कश्यप जी, योगेश भंवर जी का मैसेज आया था, काजल कक्कड़ का चेंबूर से, रजनीकांत पाटिल का मैसेज आया था. साथ ही साथ में मैसेज आया था महेंद्र दीपन का, संदीप कुमार का मैसेज आया था, शुभलक्ष्मी मस्तकार, अजय साखरे, शुभदा, राजेंद्र न्यू पनवेल से मैसेज आया था, हीरामणि वर्मा, प्रवीण जी, प्रमोद चिंचालकर, राकेश माथुर जी. हाँ जी, ये कुछ मैसेजेस है. आपके मैसेजेस के लिए तहे दिल से शुक्रिया. और इन्हीं बातों के साथ, गानों के साथ देनी होगी आपको, मुझे यानी सोनाली को और
2: आरजे रिद्धि को
3: इजाजत. जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी और इन जो आप ही के रिक्वेस्ट के गाने हैं इनके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं. अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो. नमस्कार,
2: बाय.

0: and News on EIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई।

0: करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरल में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

0: केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी।

0: मंडळी, आपण संवाद पुढे सुरू ठेवणारच आहोत, पण तत्पूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो.
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हों, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन आर्मी,
1: मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में याद है, 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: रैगिंग की वजह से मैं कहूँगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया, वो एक फाउंडेशन बन जाती है।
0: ओके,
1: और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो।
0: ओके,
1: और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है।
0: ओके,
1: बेसिकली रगड़ा होता है। एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।

0: Okay.
1: In BSc and BA. Other than that, the subjects are all military science, military geography, and there are field exercises. Lekin हम जो NDA से जो होते हैं, we are bonded so well. मेरे WhatsApp group का नाम भी bonded है.
0: Okay.
1: और अभी भी हम लोग retire हो चुके हैं. People, my coursemates have been generals, brigadiers, but we still remain and talk like as if we were in NDA.
0: आपने WhatsApp का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो WhatsApp का नंबर है आप उसके साथ उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा WhatsApp का नंबर है 9868107070 9868107070. कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए. आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको. मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं. और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
0: ओके, फौज में ही जाना है.
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में. बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहाँ.
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रैंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट. यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया.
0: सो इज दैट अ एडवांटेज, और यू थिंक यू मिस समथिंग अगर सिविलियन एरिया में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंटोनमेंट्स और आर्मी स्टेशंस आर इन द फील्ड एरियाज. सो फील्ड एरिया में तो यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तुम्हारे आसपास ही होनी चाहिए.
0: जी,
1: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है.
0: ओके,
1: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन. कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए.
0: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
1: यस, बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज, बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, अ न्यू प्लेस एवरी टू इयर्स, थ्री इयर्स.
0: जी,
1: एंड आई रियली लव दैट. एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन यू नो थिंग विच आई हैव गॉन थ्रू. एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा, भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ए फोर स्कूल में, सुब्रोटो पार्क दिल्ली में, बोर्डिंग स्कूल.
0: टैप्स कहते थे टैप्स,
1: हाँ. टैप्स. अब टैप्स हो गया,
0: पहले और मेरा एक कनेक्शन है,
1: एफसीएस होता था.
0: ओके,
1: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई. सो that is how the academics was. Luckily I went through the NDA exam in the first attempt.
0: जी,
1: and NDA चले गए.
0: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं. अहमदनगर में आपका, आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
0: जी,
1: सबसे पहले. उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं.
0: okay.
1: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
0: okay.
1: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है.
0: okay.
1: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजयंत होते थे, और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
0: जी,
1: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था. मैंने अहमदनगर में आई वाज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक. एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
0: वर्जन्स है.

0: सर टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा है ना. सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
1: माय फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज द टैंक रेजिमेंट.
0: ओके.
1: एंड आई जॉइंड अ रेजिमेंट कॉल्ड द डेक्कन हॉर्स.
0: डेक्कन हॉर्स
1: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद.
0: All right.
1: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
0: Gotcha.
1: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called Province Horse.
0: Okay.
1: For quite some time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think. Where Province Horse sort of became a sister regiment,
0: okay.
1: though in on the other side of the border.
0: Okay,
1: and we had one officer also till quite late going to London, UK, to attend the British officers who used to host their fathers or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So, sir, quite a
0: Deccan Horse. के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया कुछ वो अंदर की आपके अंदर की भावना यू वांट टू शेयर विद अस.
1: यस आई वाज ऑलवेज अ कैवलरी मैन. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं काली टोपी
0: जी.
1: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं. एक इन्फेंट्री होती है एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
0: जी.
1: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं.
0: okay.
1: वो लीड करते हैं. दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट. ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज ऑल द टैंक्स टू. इट्स अ टफ लाइफ. गर्मी होती है अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
0: हाँ वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग.
1: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पूना हाउस की अरुण खेतरपाल पर
0: जी, जी.
1: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है. ये ऊपर का पोला होता है उसमें बैठ के जाना है वहीं सोना है अपने सब कुछ वहीं करना है.
0: ओके.
1: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी. तो
0: अच्छा.
1: हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
0: अच्छा.
1: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है.
0: Which is T-92?
1: T-72, T-55, T-54 होते थे उसके पहले. अब T-90s. कॉम्पैक्ट टैंक. उसमें एक गनर होता है एक कमांडर होता है एक ड्राइवर होता है.
0: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो?
1: नहीं उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं. यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है. यू नो गनरी के गैजेट्स हैं रेडियो के गैजेट्स हैं ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. देयर इज लॉट ऑफ एमिनेशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
0: तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
1: सॉर्ट ऑफ. डिजिटाइज तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ.
0: देखिए सिविलियन हूँ सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा.
1: हाँ जी.
0: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है आपको अपनी लोकेशन अपना रूट आप देख रहे हो. यू नेवर नो.
1: यस
0: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो. इट्स मोर टुवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहा
1: हूं. के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात.
0: ओके.
1: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था
0: जी.
1: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
0: ओके.
1: लेकिन नेविगेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो यू हैव इवन गूगल मैप्स.
0: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ. सोचिए हमारे टैंक्स हैं एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं आपने सारा जो प्लान है आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है.
1: करेक्ट.
0: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा. चार टैंक्स इधर गए या उधर गए या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान्ड कुड नॉट हैपन. नाउ यू हैव टू फेस. सो हु गाइड्स द रूट. वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
1: सी देखिए ऐसा होता है पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है.
0: ओके.
1: कि क्या करना है कैसे करना है कहाँ जाना. देर इज हमें मैप्स हमारे

0: आने के टाइम में
1: जी,
0: मैप्स इशू होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए
1: जी।
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाड्रन होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स, हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं। तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव अ स्क्वाड्रन कमांडर, एट ट्रुप लीडर्स जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव अ स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ, दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर।
1: ओके,
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है। जो सीओ होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है।
1: ओके,
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट,
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली,
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज आल्सो इन द आर्मी।
1: अच्छा,
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर। देखिए, बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है।
1: ओके,
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में आए हैं जहाँ पर भी हैं या टैंक्स में, और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
1: ओके,
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी। You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था।
0: हाँ,
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है। आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निकनेम मिकी है,
1: करेक्ट?
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस। That name stuck. Very funnily, Armored Corps में अगर आप किसी को बोलोगे do you know Major Swadesh Kumar Yadav, they will look a blank. But if you tell them do you know Major Mickey Yadav, they'll all know.
0: Oh, wonderful. Real mates, हाँ, आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: Absolutely.
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है। आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, अगर सीन है, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप, उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो

0: होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड.
1: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज अ टफ ट्रेनिंग, इट इज नॉट लाइक चलो यार आओ प्रैक्टिस करते हैं, नो इट्स लाइक दैट्स द रियल वॉर सिचुएशन, रियल लाइफ
0: सिनेरियो वॉर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं
1: जी
0: राजस्थान डेजर्ट्स में, और वहां जाकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं.
1: ओके सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है, और वो कह रहे हैं मेरा नाम गजानन शिंदे है, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है. सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
0: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन. एंड अहमदनगर का जो आमटको स्कूल सेंटर इन स्कूल है
1: जी,
0: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से.
1: ओके
0: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट, क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
0: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी,
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
1: ओके
0: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस
1: जी,
0: एंड आई वाज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन.
1: ओह,
0: एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे, और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे. तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: Somewhere in the desert border, उसके जैसलमेर के आगे आसपास बॉर्डर के टाइम
1: जी.
0: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे, और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस जमाने में ये जहरों वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाईस पर एक मैप रखते थे, और
1: आजकल भी रखते हैं.
0: हाँ, रखते हैं,
1: हम लोग रखते हैं.
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है. तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर. तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री.
1: ओके,
0: तो वो आ गए, और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का. तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर. तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए. तो मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर. बट आई वाज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक.
1: अच्छा,
0: अभी आपने एमिंग की बात की, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा नहीं सर. उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ.
1: ओके,
0: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी,
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा. तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है.
1: गॉट इट,
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा.
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है.
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल, एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज.
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है. एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
1: जी.
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी.
1: ओके,
0: शायद

0: नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहां पर.
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हम टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन वी कम बैक टू दैट?
0: यस. सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो. कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है, ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं. वो सॉफन करते हैं टारगेट को. सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर, उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है. और दैट इज द ओनली वे वेर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है.
1: ओके.
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए.
1: ओके.
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट. उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके, और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
1: जो कि हुआ. मतलब yes, हमने देखा वहां. बिल्कुल हुआ. Yes, हमारे पीवीसी yes, जो yes, है PVC परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं.
0: यस यस एब्सोल्युटली.
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड जब प्लेन्स में होती है, वहां टैंक्स का रोल.
1: वहां टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है. वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे.
1: ओके.
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं.
1: राइट.
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया.
1: बट सर, आज के टाइम में, जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहां पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक they have their own ways to handle such attacks.
0: You see, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: this was a totally different operation. इसमें for the first time we actually did not really cross the border. And we had remote controlled drones. We set off missiles without crossing the border. The aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns, and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila Operation Sindoor mein. Shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
1: Okay. Right sir, ek hamare listener hain. And he is from Tamil Nadu. Shri Rangam Rajesh. Shri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message. And aapko good evening kehte ho, keh rahe hain ki bonded major SK Yadav sir, Mickey Yadav sir, greetings to your bonded the company here. And of course, hum yahan par unka jo message padh rahe hain, keh rahe hain Maratha, greetings to your bonded WhatsApp 2 and your MH16 Ahmednagar Ahilya Nagar Maratha bonded regiment 2 and bonded cavalry Cavalier Yadav sir 2. I don't know what he means by that, but something he's written typical of Maharashtra is Vanakkam, and that is something very sweet.
0: Yes,
1: somebody
0: yes,
1: known to you?
0: Yes, no, not known to me.
1: Okay.
0: But you know, Vanakkam I think is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh rahe hain,
0: but he has the spirit.
1: Sara kiya Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Tamil Nadu, Jai Bharat. Then that's the spirit that we live with.
0: The cavalry sir. Regiment ko officers ko kai baar cavalier bol jate hain. Okay. So that's what is meant.
1: ओके. सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: No, no. In entire Operation Sindoor mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage.
1: Ji.
0: Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री वॉज नॉट यूज बट दे वर ऑपरेशनली रेडी टू गो इन शुड द ऑर्डर्स कम एंड दे वर एब्सोल्युटली रेडी टू.
1: ओके, मैं सीधे टफ क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप टैंक रेजिमेंट आप उसका अंग रह चुके हैं, यू हेडेड योर ओन ग्रुप. Has it become more difficult now to step into the enemy zone इस मॉडर्न एरा में?
0: यू सी, देखिए ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है, आई वुड से ही इज हैज एन अपर हैंड,
1: सुपीरियर है वो.
0: यस.
1: ओके,
0: सो अपेरेंटली द चाइनीज डिड गिव देम लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच देर वर सम अर्ली दे ट्राई टू डू समथिंग हेयर एंड देयर. टर्की इंटरवीन्ड इन द ड्रोन्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट वी आर, देखिए टेक्निकली एंड अदरवाइज पाकिस्तान इज नो मैच टू द इंडियन आर्मी एट ऑल, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर, इट इज नो मैच एट ऑल. इन ए लाइव वॉर, इन ए कन्वेंशनल वॉर टूडे, दे वुड नॉट लास्ट मोर देन 72 आवर्स एट द मोस्ट, नॉट एट ऑल, देर इज नो मैच एट ऑल.
1: सर हमें न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फीजी आइलैंड से लेकर ब्राजील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कमेंट, अ स्टेटमेंट दैट यू गिवन.
0: आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट, एंड नोइंग द इंडियन आर्मी, द कैपेबिलिटीज, यस, इट हैज नॉट बीन टेस्टेड फुली इन ऑपरेशनल सिंदूर, बट शुड इट बी रिपीटेड एवर, I think it will come to light what the Indian Army is about.
1: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं, और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में, आह लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: मेरे पति को बचा लो.
3: हाँ बचा देगा, कोई बात नहीं. बहन क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर. अपने आप बोले ना मुझे.
2: यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी.
3: यहाँ पे
2: उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी.
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
6: Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था.
4: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
7: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
8: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
9: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
10: Just to point out,
11: we're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
10: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
12: This was time to convey some message to our adversaries.
13: We were of course prepared.
14: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
15: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा.
14: And this has never happened in the history of independence.

0: you were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता
1: हूँ. There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities. It's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology you are saying ki yehi superiority aap bata
1: rahe hain. Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली, उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो obviously it's a city which is being targeted. So it was downed. It was absolutely shot down. So that's a big thing. And I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
0: you heard that?
1: Yeah, I mean they were saying अभी दिल्ली पे bombarded हो गई है, ये bombardment हो गई है. I mean all false fake news.
0: सर हमारे traffic jam में फंसेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि how difficult it is to go out from here.
1: Yes.
0: Anyway sir, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: सो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे
1: और डिस्कशंस होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी हम तीनों थे कोस्ट, तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी lot of retro music also, it gives me all sorts of music, so I like it, it's my favorite.
0: FM Gold भी है जिसमें,
1: FM Gold है, I like it.
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था, हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं जी। तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे जी, वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी।

0: दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति नीति भल्ला.
1: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य
0: हैं? हां, फ्रेंड्स हैं, मैं से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी.
1: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो
1: अहेड। एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके।
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एम्यूनिशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा।
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके।
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई did not ensure that there were laces in the football shoes
0: ever.
1: So that I used to always remember. And
0: but it groomed you into a good individual.
1: Yes, exactly. NDA mein also aapko main ek cheez bataunga ki agar aapke paas table manners nahi hai, they teach you other than this, they teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table ke upar aap एल्बो रख के नहीं खा सकते। अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू

0: एडजस्ट. इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
1: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
0: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस. जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
1: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल. नेचर से बहुत प्यार करते हैं.
0: चला गया था
1: जी.
0: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया. एंड वी यूज्ड टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच वी स्टिल डू. आई डोंट नो व्हेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
1: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
0: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज.
1: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम.
0: आर्मी डेज से. एंड इवन नाउ टुडे आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर अ हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ. एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक.
1: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
0: नहीं नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन्ड, दे आर गुड लॉट. एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
1: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है एंड इट्स अ पर्सनल ओपिनियन दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 years लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन्ड जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
1: ग्रेट पॉइंट.
0: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि कंपलसरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन.
1: यस,
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेस यू. एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी? सर आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो, कुछ आप
0: जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से शॉट मारते थे,
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो अच्छा। टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था. दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
1: अच्छा. एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश चाहिए? बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग है जो आप में है और वही जज्बा है, तो Absolutely, there's no difference.
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है।
0: आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूँ। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया है, और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहे तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है, और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग, और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस में विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का। मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा।
1: ओ वैसे विवेक यू अर्न्ड अ पास आईपीएल पास इफ यू आर लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा,
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: ओ, फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी,
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना।
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए?
1: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स, यहां देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाह।
1: तो
0: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप
0: इन एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर हंटर उड़ाते?
1: यस यस, ही वाज सीन द 71 वॉर, इज सीन द 65 वॉर। यस।
0: ओके। और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके अंदर?
1: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा, और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा, और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे देखते थे हम लोग। एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स।
0: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
1: हाँ।
0: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
1: यस, आई हैव गॉट अ सीपीएल।
0: ऑलराइट। तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान?
1: आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू यूके।
0: ओके।
1: एंड कैंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था।
0: वाह।

0: के में। राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़ें। आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर।
1: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके।
0: हाँ हाँ हाँ, दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर।

0: राइट देन सर, इट वाज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. Play a lot of sports, play a lot of, whether it's tennis, swimming, outdoors, and see less of screen time. That's it.
0: Wo bahut zaruri hai sir. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please so look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 5:02 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो, और मैं हूं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविंद्र चौहान। और बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे साथ हमारी एक नई दोस्त, नई साथी, एक नई प्यारी सी आवाज़ है। और ये जो प्यारी सी आवाज़ है, खुद ही अपने बारे में बताएं तो बेहतर होगा।
2: नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग मुंबई। मैं हूँ प्रियदर्शनी और मैं हूँ FM रेनबो 107.1 पर, जहाँ हम हैं म्यूजिकली योर्स। और आज हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं।
1: हाँ, तो चलिए पहले एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं।

0: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और मैं आपके साथ आरजे रविन और आरजे प्रियदर्शनी इस शो में हमारे साथ हैं
1: जी।
0: तो प्रियदर्शनी, अभी मैं ये गाना बज रहा था तो मेरे दिमाग में ना एक थॉट आ रहा था कि इस दुनिया में जैसे कितनी तरह के लोग हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से?
1: अच्छे बुरे।
0: अच्छे बुरे यानी दो तरह के? यानी नहीं, क्योंकि इस वक्त दो आरजे हैं तो तुमने दो बोल दिया।
1: दो जनरली हम जब भी बात करते हैं तब दो कैटेगरीज हमारे दिमाग में पहले ही आते हैं।
0: हाँ।
1: अच्छे बुरे होते हैं, कई बार लोग अमीर गरीब।
0: हाँ, अमीर गरीब भी होते हैं,
1: काफी फर्क होता है।
0: और मेल फीमेल भी होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दो यूनिट है ना।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इस धरती पर मतलब कहीं भी जाएं, एक मेल फीमेल, बर्ड्स में भी, एनिमल्स में भी, तो और क्या हो सकता है? और सोचिए ना, कुछ और भी तो हो सकता है।
1: और जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग इतने कामयाब नहीं हो पाते।
0: हाँ हाँ, राइट राइट, दो कैटेगरी, यानी लाइफ में जो लोग कामयाब हो चुके हैं और एक ऐसे लोग जो बेचारे कामयाब नहीं हो पाए, यानी कि सक्सेस नहीं मिले, फेल हो गए। तो इसी पर आज मैं बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता था कि तुम घूम फिर के यहाँ पर आ जाओ। ये मतलब दो तरह के लोग, एक कामयाब लोग और एक जो कामयाब नहीं हुए। और प्रियदर्शनी, मुझे लगता है कि इस दुनिया में ना दो ही कैटेगरी हैं, अमीर अच्छा। गरीब भी कोई कैटेगरी नहीं है, अच्छा बुरा भी कोई कैटेगरी नहीं है, कि एक इंसान जो कामयाब हुआ और दूसरा जो कामयाब नहीं हुआ।
1: Okay.
0: और इस वक्त स्टूडियो में दो कामयाब लोग बैठे हैं।
1: मुझे कामयाबों में गिनने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: एनीवे, अच्छा, जो कामयाब हो गए वो तो हो गए, और जो नहीं हुए अब उन्हें क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से?
1: देखिए, एक तो पहली बात, नाकामयाबी इंसान को बहुत दुखी कर देती है, बहुत खुद पर आपको विश्वास खोने लगता है। तो मुझे लगता है तब आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए।
0: राइट राइट राइट।
1: खुद को आप कैसे सुधार सकते हैं,
0: बेटर कर सकते हैं,
1: संभाल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस पर काम करते रहे तो मुझे लगता है फिर शायद नाकामयाबी भी हमारी जिंदगी में
0: से दूर हो जाएगी।
1: हाँ, सफलता में बदल सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इस इतने सारे भारी ज्ञान के बाद एक गाना प्ले करते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: ओ मेरी सोनी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: आपला विकास।
1: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल। तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया। प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे। जनगणना 2027 आपली आहे। जनगणना आपली आहे।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, वेलकम बैक। 5:21:12 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी और आपके साथ दो RJ रविन चौहान और प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी कैसा लग रहा है? तो कैसा लग रहा है प्रियदर्शनी?
3: अच्छा लग रहा है
2: मेरे साथ कोस्ट करते हुए।
3: बहुत मजा आ रहा है।
2: डर तो नहीं लग रहा?
3: डर भी बड़ा सब्जेक्टिव है।
2: जैसे

0: भाषाओं में हमें सुनते हैं, तो वो टेस्ट भी ऐसे ही थे, अलग अलग भाषाओं में थे, फिर ऑडिशन था।
1: तो वहाँ डर लगा आपको?
0: बिल्कुल।
1: तो वही हमें बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे कि कामयाबी और कामयाबी ना मिलना
0: जी।
1: तो जब कामयाबी नहीं मिलती है वहाँ पर भी डर होता है।
0: बिल्कुल।
1: और उस डर की वजह से कभी कभी लोग पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। जैसे ऑडिशन के वक्त में कितने सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जो डर की वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए और बाहर हो गए।
0: बिल्कुल, मुझे याद है रिटन टेस्ट में मेरे साथ एक थी, उसी पर्टिकुलर रूम में थी, हॉल में थी
1: जी।
0: और उन्होंने रिटन टेस्ट में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो उस दिन इतनी नर्वस हो गई थी।
1: अच्छा।
0: कि वो बस बैठी रही चुपचाप,
1: घबरा गई।
0: बिल्कुल, बहुत घबरा गई थी और वो उस एक घंटे में कुछ नहीं कर पाई और फिर उन्हें जाना पड़ा।
1: उन्हें आपको देखकर मोटिवेशन लेना चाहिए था।
0: नहीं नहीं, मुझसे भी कई ज्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे थे। पर हाँ, जब आप डर जाते हैं तब आप शायद अपना पूरा श्रम, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा दे भी नहीं पाते, क्योंकि आप डर जाते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाई तो
1: अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। जो बेस्ट है वो निकल कर नहीं आता। जैसे आपका डर नहीं था, आपको डर नहीं लगा तो आप यहाँ तक आ गई।
0: नहीं नहीं, डर लगा, पर डर के बावजूद करना तो पड़ता है ना।
1: हाँ, तो जो डर है उसको, उससे बचना बहुत जरूरी है। वैसे 1993 में फिल्म आई थी डर, और उसके 4-5 साल के बाद आई थी जीत, यानी डर के आगे जीत है। तो यानी डर को जीतना बहुत जरूरी है। एनीवे, डर लाइफ की एक उलझन है, तो उस उलझन को सुलझाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: ऐसा ही गाना किशोरदा की आवाज में।

0: जी हाँ दोस्तों, 5:28 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपके साथ दो आवाज़ें दो आरजे हैं, यानी एंटरटेनमेंट की डबल डोज। तो प्रिय दर्शनी, हम बात कर रहे थे डर की और डर की वजह से कामयाबी का ना मिलना। और जब किसी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है तो उसे दुनिया किस तरह से देखती है?
1: बहुत बुरी तरह से देखती है।
0: जैसे
1: असफल विफल लोगों को लोग बहुत जज करते हैं। आप खुद अपनी विफलताओं से परेशान
0: हो जाते हैं
1: और दुनिया आपको और दुखी कर देती है।
0: हाँ, एक स्कॉलर ने भी कहा है कि जो संसार है ना, असफलता को बहुत खराब नजर से देखता है।
1: बिल्कुल।
0: और अक्सर लाइफ में भी होता है कि अगर अभी आप किसी से मिलें और वो अपने बारे में बताएं कि वो आईएएस ऑफिसर है या उसका 500 करोड़ का बड़ा बिजनेस है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप
1: हमारी हमारा इमीडिएट रिस्पांस होता है कि हम उसको एक ऊंची जगह पर रखते हैं। उसके बारे में हमारी राय अच्छी होती है
0: और हम उससे थोड़ा एसोसिएट भी होना चाहते हैं, उससे दोस्ती रखना चाहते हैं कि भाई बड़ा आदमी है, कभी लाइफ में हमारे काम आएगा। और अभी कोई ऐसा आदमी मिले कि यार ये आदमी तो लाइफ में कुछ भी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, ऐसे ही घूमता है, कुछ टाइम वेस्ट कर रहा है, और तो हम उससे मिलके हमें लगता है कि यार इस आदमी का क्या मतलब है, हम मतलब क्यों इससे ज्यादा बात करें, इससे ज्यादा दोस्ती करेंगे बात करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो एनीवे बातचीत हम करते रहेंगे और प्रियदर्शनी के साथ आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। एनीवे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चले।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। 5:38 और कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी। तो प्रिया दर्शनी, एक बात बताओ, जब आप स्कूल में थी, जैसे स्कूल जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, तो क्या होता था?
2: बहुत डांट पड़ती थी। माँ बाबा हमेशा यही पूछते थे, याद दिलाते थे कि अरे नहीं पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी,
1: फेल हो जाओगी।
2: फेल होना तो एक मतलब एक डर था जिंदगी में कि फेल हो जाऊंगी।
1: फिर कॉलेज में गए, फिर क्या हुआ?
2: वही
1: डर।
2: पढ़ाई लिखाई की पूरी जिंदगी में यही चलता रहा कि भाई।
1: अच्छा, कभी फेल हुई क्या?
2: नहीं।
1: यानी तुम एक पढ़ाकू बच्चा थी।
2: बिल्कुल।
1: पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, माँ बाप को परेशान नहीं करता, पढ़ता रहता है और पास होती रही। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं और बहुत मतलब पेरेंट्स को तकलीफ होती है। लेकिन क्या है ना, कभी कभी इंसान फेल होता है, लाइफ चलती रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है जो लोग स्कूल में कॉलेज में फेल हुए, उन्होंने बाद में जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हुए कि कमाल भी किया है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेल होना अच्छा नहीं लगता है। और जैसे फेल शब्द मुझे लगता है कि हमारे पीछे लगा रहता है हमारी जिंदगी में, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, नौकरी, सब जगह। FAIL इंग्लिश का ये शब्द ना बड़ा बड़ा भयानक है, बड़ा कमबख्त, डराने वाला शब्द है,
2: बड़ा क्रूर शब्द है। और जैसे वो कार्टून्स में नहीं दिखाते हैं कि इंसान भाग रहा है और पीछे एक डरावना कुत्ता भाग रहा है, वैसे हम जिंदगी भर भागते रहते हैं इस फेल के डर से कि कहीं हम विफल ना हो जाएं।
1: और इसको अगर इससे बचना हो तो क्या करें?
2: मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी एक्सपर्ट ने इसको डिफाइन किया है कि FAIL मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ।
1: अरे वाह।
2: जिंदगी में पहला प्रयास, जिंदगी में पहली कोशिश। और मुझे लगता है कि इस क्रूर भयानक शब्द को अगर हम एक नई परिभाषा दें तो एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हम डरने के बजाय आशावादी हो जाते हैं।
1: तुम तो बहुत ज्ञानी हो।
2: आपकी सोबत का असर है।
1: मेरी सोबत का रही ऐसे। anyway, बहुत ही अच्छी बात कही और मेरे मन को छू लिया। तो यही गाना सुनते हैं।
2: बिल्कुल।
1: चलिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी और आपका अपना चैनल एफएम रेनबो। तो प्रिय दर्शनी, हम बात कर रहे थे ना कि फेल और फेल पर आपने अपना अच्छा सारा काफी सारा ज्ञान दे दिया आज यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। और अचानक मुझे एक और शब्द मेरे माइंड में आया,
2: अच्छा
1: नो। अक्सर हम बहुत बार लोगों से मिलते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो नो आपके लिए कोई काम नहीं है, आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, नो नो नो नो नो। तो नो नो सुनते भी आदमी थक जाता है ना। तो इस पर भी अगर आपके पास कोई ज्ञान हो तो आप हमें दे सकती हैं।
2: आप मुझे बहुत ज्ञानी बना रहे हैं, मैं इतनी विदुषी नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे लिसनर्स बोर नहीं हो रहे हैं, पर ये बात तो है, आप ना सुनते सुनते आपके आत्मविश्वास को ठेस भी लगती है और आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि क्या मैं ये काम करने लायक हूँ या मैं सही कर रही हूँ। और नो शब्द पर भी मैंने वही पढ़ाई लिखाई में ही पता चला कि इसकी भी अगर आप परिभाषा एन ओ को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह कर दें तो फिर वही नया दृष्टिकोण मिलता है, एक एक एक उम्मीद आपके अंदर जगी रहती है
1: कि नई सोच,
2: हाँ नई सोच, नई उम्मीद कि नहीं हुआ पर अगली कोशिश कर सकते हैं।
1: यानी कोई नो कहे तो आप ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा, मुझे अचानक कुछ मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की ने कह दिया नो तो यहाँ पर भी यही सोचना चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ किसी भी तरीके से नहीं जुड़ना चाहता तो ठीक हाँ, है जाने दो, आगे बढ़ो,
1: नेक्स्ट चांस, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है।
2: जी जी जी जी।
1: और आपको पता है, एक फ्रांस के बहुत बड़े सम्राट हुए थे जिनका नाम था नेपोलियन। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं था। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि आपने जो टारगेट बनाया है, जो आपका मकसद है, ये बहुत मुश्किल है, इट्स समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इम्पॉसिबल शब्द को भी कई तरह से लोग डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ कि जैसे एक स्कॉलर ने कहा है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में पहले दो लेटर्स हैं आई एम, तो वो कहते हैं कि इनको ब्रेक कर दो, आई एम पॉसिबल, यानी मैं पॉसिबल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। और जैसे आज भी ये पॉसिबल हुआ कि रविन और प्रियदर्शनी ने कार्यक्रम लव यू जिंदगी किया और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्रियदर्शनी की आवाज बहुत अच्छी है, प्रियदर्शनी बहुत ज्ञानी है, उन्हें बहुत नॉलेज है।
2: सभी लिसनर्स को मेरा बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी ज्ञानी और इतनी विदुषी नहीं हूँ, पर हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए या एक जिंदगी अच्छी तरह से बनाने बिताने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली खुद को मोटिवेट करना ही पड़ता है। तो वो फेल, चाहे वो नो हो, चाहे वो इम्पॉसिबल हो, उसके जितने अच्छे मतलब हम खुद निकाल सकें, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ,
1: तभी हमारा नसीब चमकता है,
2: तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और विफलता की तरफ नहीं मुड़ते या नहीं सोचते।
1: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम लव यू जिंदगी खत्म होता है।

0: समाचार के साथ मैं
1: जी हाँ दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी समाचार। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक मुंबई। 6:20 और 40 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम अंदाजे बयां का और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन और हमारे साथ हैं
2: प्रियदर्शनी।
1: तो प्रियदर्शनी, आप कुछ पूछ रही थी मुझसे कि इस कार्यक्रम में क्या होता है।
2: हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आप इस सेगमेंट में अंदाजे बयां में हम लिसनर्स को क्या सुनाने वाले हैं।
1: जो आपका दिल करे आप सुना दो। दरअसल इसमें शायरी होती है, गजलें होती हैं, नज़में होती हैं, कव्वाली होती हैं, सूफी संगीत होता है, यानी इसमें बहुत कुछ होता है। और अक्सर मैं इसकी शुरुआत एक शायरी से करता हूँ।
2: अच्छा,
1: तो चलिए, शायर ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे हैं। मोहब्बत के सफर में, मोहब्बत के सफर में जब पलटना भूल जाते हैं तो उनके चाहने वाले संवरना भूल जाते हैं। परिंदे तेरे आने पर सुरीले गीत गाते हैं, मगर फिर तेरे जाते ही चहकना भूल जाते हैं। मेरे दिलबर, तू जब अपनी ये जुल्फें खोल देता है, फलक पे झूमते बादल

0: जी हाँ दोस्तों, 6:35 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। और तो प्रियदर्शनी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप जवाब देना, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: जी,
0: जैसे गजलों की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा प्यार की बात की जाती है, तो आप प्यार के बारे में क्या सोचती हैं?
1: प्यार खूबसूरत है, प्यार मुश्किल है,
0: मुश्किल है
1: पर प्यार हम सबकी जिंदगी में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है,
1: चाहे वो प्यार का जो भी रूप हो, पर प्यार हम इंसानों को, इंसानियत को और
0: ऊंचे लेवल पे ले जाता है
1: और खूबसूरत बनाता है।
0: हाँ, यानी आपने डिफाइन किया, प्यार खूबसूरत है, मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी है
1: इंसान को और इंसान बनाने में प्यार का ही शायद सबसे ज्यादा।
0: हाँ, तो काफी अच्छी सोच है आपकी, और एकदम रैंडमली मैंने आपसे ऑनर सवाल पूछ लिया
1: जी।
0: और वैसे कहते हैं जब प्यार हो जाता है किसी इंसान को, तो फिर रात को नींद भी नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान प्यार की वजह से रात में जागता ही रहता है, व्हाट्सएप खेलता रहता है ना?
1: अच्छा,
0: तो हाँ। ऐसा ही गाना है, लता जी की आवाज है कि रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ लता जी की आवाज में सुनते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज है लता जी का
1: जी,
0: सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही प्यारा गीत।

0: आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: जी हाँ दोस्तों, 6:43 और 11 सेकंड हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां और आपके साथ हैं रविन और प्रियदर्शनी. तो प्रियदर्शनी, बहुत ही प्यारा सा गाना था कि इतनी लंबी रात है और नींद नहीं आती है. और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रात को नींद नहीं आती है तो आप क्या करते हैं?
2: मैं पढ़ती हूँ.
1: पढ़ती हैं
2: जी,
1: गुड.
2: कुछ देख लेती हूँ.
1: वैसे पढ़ना एक अच्छी हैबिट है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और अगर नींद नहीं आ रही, आप पढ़ेंगे तो नींद आ जाती है. एनीवे, और अगला जो गाना मैं सुनवाने वाला हूँ ये आदेश श्रीवास्तव और कविता सेठ का गाया हुआ है. मोरा पिया मोसे बोलत नाही. ये राजनीति फिल्म का है. वैसे ये एक बहुत ही पुराना क्लासिकल सॉन्ग भी है
2: जी,
1: मतलब जिसमें शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया गया और इसे काफी सारे कलाकारों ने अलग अलग अंदाज में गाया है. और जब इसे आदेश श्रीवास्तव

श्रीवास्तव ने गाया था तो उन्होंने इसमें कुछ वेस्टर्न टच डाल दिया था, एक पश्चिमी जो एक संगीत होता है उसको मिक्स किया और बहुत ही खूबसूरत एक कंपोजिशन बनी थी। तो बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनिए, गौर से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। 6:51 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां और आपके साथ हैं FM रेनबो पर RJ रविन और RJ प्रियदर्शनी। तो अगली गजल पेश करना चाहता हूँ और
2: लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
1: अरे बाप रे, आप तो मुझे मतलब फंसाना चाहती हैं।
2: नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपके लिए गजल क्या है।
1: अच्छा, गजल क्या है? यानी मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए प्यार क्या है, तो आपने मुझसे पूछा है कि गजल क्या है। वैसे प्रियदर्शनी, गजल का और प्यार का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है।
2: अच्छा,
1: जनरली हम लोग लाइफ में जैसे बोल देते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू वगैरह, ऐसे ऐसे जो मॉडर्न अल्फाज हैं, लेकिन जब प्यार को शायराना अंदाज में पेश किया जाता है तो वो गजल बन जाता है।
2: वाह, बहुत खूब।
1: मतलब गजल प्यार की शुरुआत भी है और प्यार की परिभाषा भी है, और जब दिल टूट जाता है किसी इंसान का और दिल से जो जज्बात बाहर निकलते हैं, तब कहीं ना कहीं वो अल्फाज गजल का रूप ले लेते हैं, गजल के अंदाज में ही बाहर निकलते हैं।
2: बहुत खूब।
1: और इसीलिए जितने भी शायर हैं जिन्होंने बहुत सारी खूबसूरत शायरी लिखी है, उन्होंने मतलब मोहब्बत में बहुत चोट खाई है, तभी उन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है। एनीवे, चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। और फिल्म है प्रेम रोग, और प्रेम रोग का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है।

0: अंदाज़-ए-बयां।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंदाज़-ए-बयां और प्रियदर्शनी आपको अगले शो के बारे में कुछ बताना चाहती है।
0: जी 7:10 बजे हमारा कार्यक्रम हम तुम शुरू होगा, जहाँ हम बजाते हैं हमारे लिसनर्स के फरमाइशी गीत। मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप हमें मैसेज करें अपनी पसंद के गाने, वो गाने जो 1960 से लेकर 1980 तक बने, और मैसेज करिए हमें 8657661071 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स। जी हाँ दोस्तों, 7:10 और 56 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो और कार्यक्रम होगा हम तुम। तो प्रिय दर्शनी, इस कार्यक्रम में क्या होने वाला भाई?
1: भाई हम बजाने वाले हैं हमारे लिसनर्स, हमारे सुनने वालों की फरमाइशी गीत जो वो हमें मैसेज करके बता रहे हैं।
0: तो जो मैसेज पे सबसे पहला गाना आया और मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है?
1: क्लासिक चौधरी का चांद फिल्म, और गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने।
0: जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत है और इस गाने की फरमाइश की है माहिम से दीपा पालकर जी ने और अंधेरी से तनुजा शर्मा ने। तो बहुत ही प्यारा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि आप 1960 से लेकर 1980 तक की फिल्मों के गानों की रिक्वेस्ट करें, लेकिन हमारे कुछ लिसनर्स नई नई फिल्मों के गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एनीवे, तो ये गाना किस फिल्म से था भाई प्रियदर्शनी?
1: ये गाना अभी जो बजा वो था फिल्म सूरज से, और इसको गाया था मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने।
0: और इस गाने को सुनना चाहते थे अजमेर से लाली झा। और अगला गीत है फिल्म झुक गए आसमान से, आवाज है लता जी की, और इस गाने की रिक्वेस्ट की है उज्जैन से संयोगिता चौहान और सुंदरी ठाकुर ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, अब आन मिलो सजना, 7:26:40 और कार्यक्रम हम तुम। तो प्रियदर्शनी, कौन सा गाना सुनवाने वाली हो भाई?
1: अब बजेगा फिल्म काला पानी से मोहम्मद रफी का एक बहुत उम्दा गाना।
0: और इस गाने को सुनना चाहते हैं अमरावती से पंकज मोहोड़ और ग्रांट रोड से हमारे फिरोज सिंगनपुरिया जी।
1: अच्छा,

0: जी हाँ दोस्तों, 7:35 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के प्यारे प्यारे गाने।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कौन सा गाना था और फिल्म का नाम क्या था प्रियदर्शनी?
1: अभी जो खूबसूरत नगमा बजा वो था फिल्म नाइट इन लंदन से, जिसको गाया था मोहम्मद रफी साहब ने।
0: और इस प्यारे से गाने को सुनना चाहती थी इंदौर से चंदना चौहान। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और व्हाट्सएप कुछ ऊपर नीचे हो गया तो लिसनर का नाम हम गाने के बाद में बताएंगे। आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है घर घर की कहानी।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत था। फिल्म का नाम था घर घर की कहानी, आवाज़ थी किशोर कुमार की। और इस गाने को सुनना चाहते थे प्रणीत बेंगलोर से, और काफ़ी देर से उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर रखी थी और पेंडिंग थी। और अगला गीत है रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म है सूरज, बहारों फूल बरसाओ।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म अप्रैल फूल का प्यारा सा गीत मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत। ये गाना था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, रफ़ी साहब की आवाज़ थी और इस गाने को सुनना चाहती थी मुंबई सेंट्रल से जुम्मा। और अगला गीत यशुदास की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है आनंद महल और लिसनर का नाम हम इस गाने के बाद बताएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। 7:55 हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ हैं, जैसे प्रकाश शिंदे, प्रणव शिंदे, रजनीकांत पाटिल, अजय साखरे इंदौर से, अमिता जाधव, राजेंद्र परमार जी, प्रवीण जी, राजू बिरावाला और हीरा मणि वर्मा जी, राम प्रजापति, दीपा पालकर जी, संजय पाटिल जी, फिरोज सिंगनपुरिया जी, प्रदीप अनंत कृष्णन चेंबूर से और दिग्दर्शन और कविता मेरठ से और अशोक पाटिल वराली से और शुभदा जी, ये सभी लिसनर हमारे साथ हैं और इनकी रिक्वेस्ट भी हमारे पास हैं। भालचंद्र फाटक मुलुंड से हमारे साथ हैं और श्रीपद जोशी जी नासिक से हमें सुन रहे हैं। और कार्यक्रम का आखिरी गीत, प्रियदर्शनी, कार्यक्रम का आखिरी गीत है और इसे सुनना चाहते हैं पुणे से हमारे एक बहुत ही प्यारे लिसनर हैं,
2: अच्छा,
1: राकेश माथुर जी, और हमेशा ये हमारे शोज के साथ जुड़े रहते हैं और रिक्वेस्ट करते रहते हैं।
2: जी, दिखा है तो, मैंने भी।
1: तो राकेश जी के लिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम, आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।

0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते है। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और CTR निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने CPI और CPIM के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच AIADMK भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के

0: बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कंफर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. And now the news in detail. The nation today saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said today, the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said, the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said, the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a befitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also honoured the valour and sacrifice of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stressed that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy.
4: We are marking the

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को

आकाशवाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: श्रोताओं, इस वक्त बज रहे हैं रात्रि के 3:05 और हमारे मिडनाइट मेलोडीज कार्यक्रम का वक्त हुआ है। और इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, अब तो आधी रात बीत गई और अब हम मध्य रात्रि में है, तो चलिए कुछ आपको मेलोडियस गाने सुनाती हूँ जो आपको आपकी रात को और हसीन बनाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की फिल्म अक्सर से, केके और सुनिधि चौहान की युगल सुरों में।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ

0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक RBI बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 4:11 वक्त हो चला है प्रोग्राम सारे गामा का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी, डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया तो, और सर्च कीजिए आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। मैं यानी रजत आपका कह रहा हूँ स्वागत प्रोग्राम सारे गामा, हमारा नियमित प्रोग्राम ठीक 4:05 पर होता है हाजिर और रंग बिरंगे गानों से सजी होती है महफिल। आज भी वही सब होगा, वही सब आपके दस्तरखान पर सजाया है हमने सुबह के इस मधुर बेला में, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं, पवन के झोंके हैं, कुछ कुछ बदली भी है कहीं कहीं, लेकिन आसमान तकरीबन मिला जुला। इस दौरान आइए करते हैं नए दिन का भव्य स्वागत सूरज की पहली किरणों से भी पहले। मेरे यानी रजत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: कोयल सी तेरी बोली,

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।